0: अष्टपदी
1: जाचक जनजाचे प्रदान कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो धूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु में ते आवो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभु की दृष्ट महासुख होए हरस पावे बिरला कोय जिन चख ऐसे जन तृप्ता ने पूर्ण पुरक नहीं डोला ने सुपर परि प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध के संग परेशान नान सब त्याग अंतर प्रगास आनंद निर्विलाग बिड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रति सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मतले जन को प्रभ होयो दयाल सेवकी नु सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच्छपुनि श्रद्धा सब पूरी रवरिया सत्संग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरे जी काल ना भान सो क्यों विसरे जी की आ जाने सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दीगा सो क्यों विसरे जे जीवन जिया सो क्यों विसरे जगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों विसरे जी बिकते काटै जन्म जन्म का टूटा काटै गुर पूरे तत है बुझाया प्रभना नानक जन त्याया साजन संत करो हे काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपरा नाम जपावो भगत पाए त्रिय संसार बिन भगति तन हो सिचार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का हो बदनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रसाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्र उपेक दर्शक होय मान मिक्स साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कहु पावे संग एक बस दीजा कर मैं गुर प्रसाद नाम जप लै ताकि उपमा कहे न जाए नानक रह सर्व समाए प्रभ बख्शान दीन दयाल भगत बिचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना कै प्राण धार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हित हम निर्गुण यार नीच अजा नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गायन कराज भोग बुढ़ई हर के नाम की कथा मन पाई भाव भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरनी सोभा धनवंत हृदय से पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दे

जब एक कह रगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सु पाए तब शिव शक्त कहो कुछ ठाए, जब आप पे आप अपनी ज्योत रह तब कवन निडर कवन कत डर अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर गम पार, अविनाशी सुख अपनासन तह जन मरण कहो कहा बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब गत गोचर प्रभ का तब चित्र गुप्त किस पुछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गति तब कौन छिटी गुण बंधन बाधी, अपना बाप ही चर्जा नानक अपन रूप आप ही प्रजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छित्र लगत कौकीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किस भूक तृप्तावै, कर्ण करावण करने हार नान कर दे का नाहि समार, जब अपनी शोभा अपन संग मनाए तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपी परवीन तह वेद देव कहा कहू चीन, जब अपना पाप उड़तारे तो शगन शगन कहाँ बिचारे, जह अपन ऊंचा अपन अपनेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा, विस्मन विस्म रहे विस्मात नानक अपने गत जानो आप, जह छल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्याप्त माया, आपस को वापे आदेश तिह गुण का ना ही प्रवेश, जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किसला गय चिंता, जय अपना पाप पतियारा तह कौन कथ कर सुन हारा, बहो व्यंत ऊष्टि ऊजा नानक आपस को वापे पहुँचा, जय प्रचयो प्रपंच कार्ति गुण मैं कीनु विस्तार, पाप पुन तय भई कहावत को नरक को सुर्ग मंशावत, आल जाल माया जंजाल हों मैं मुँह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान, आपन खेल आप कर देख्या खेल संकोच तौ नानक एक जह भगत भगत आप जय बसर पासार संत प्रताप, दूम पाखा पे धनी उनकी शोभा उनहो बनी आपे कौत करे अनद चो जापे रस भोग निरजोग, जिस भावे तस अपन लावे जिस भावे तस खेल खिलावे, बेशुमार थाया गणत तोले ज्यों बुलावू त्यों नानक दास बोले, श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार, अष्टपदी आप कथे अब सुनने हारा पे का विस्तार, जात भावे तृष्ट पाए अपने बाणे ले समाये, तुम ते पेरे रहे किश होए अपन सोत सब्जक्त परोए, जा को प्रभ जीवा बजाय सच नाम सोए जन पाए, सो समदर्शी तत्का बेता नानक सकल शिष्ट का जीता, जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राख जस कोई न मारे सो मुआ जिस मन विसारे, तिस तजबर कहाँ को जाए सब सिर एक न जन राय, जी की जुगत जा के सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेंत अपार नानक दास हार, पूरन पूर है दयाल सब उपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह व्याप, प्रतपाल जीन बहु भांत जो जुर चुसत चेत्यात, जिस भावै तिस लय मिला लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्य करन हार नानक एक जाने जन लागा हारे, कहना है तिसकी आस न बिरथे जाए, शिव कहो सेवा बनियाई हुकुम बुझ परम पद पाई, स्त्री ऊपर नहीं विचार जा कै मन बस्या निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पे मेले, साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद, राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुवाओ, आठ पहर प्रपेखो नेरा मिटे अज्ञान मिनसे अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो, हलत पल दो लियो सुवा राम नाम अंतर उधार, पूरे गुर की पूरी दिख्या जिस मन बसै ते साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए, सच व्यापार करो व्यापारी दरगा निभै खेप तुम्हारी, एक का टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे, तिस्ते दूर कहाँ को जाय बरेरा कन्हार, ते आय नर पहुँच पै सकल पाँव मिटा प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस प्रभ राखे दसना ही दुख नाम जपत मनो बत सोख, चिंता जय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार, सिर उपर छाडा गुरसूरा नानक ता के कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखद उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान अंतर जमी पुरख प्रधान, जिस मन वसै सुहोत निहालता कह निकट नाबद काल, अमर पाए अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया।

श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान धीर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मर प्रगास। अष्टपदी संत संग अंत पर बिठा नाम प्रभु काला गा मीठा सगल समगरी कुस घट माहे अनक रंग नान दृष्टा है नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। सुन समाधन तैनाद कह न जाई चरत विस्माद तिन देखा जस आप दिखाए नानक तन सो जी पाए। सो अंतर सो बहार अनंत कट कट प्या प्रया भगवंत धरन माह आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण पतपाल। बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गए तैसा करुण पावन पाणी बैसंतर माहे चार कुंड दिशे समाहे। तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससिय सुर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल न कब हों डोले सर्व कला करके लखेल मोल ना पाइया गुण अमोल। सर्व ज्योत में जाके ज्योत तार्यो स्वामी ओतपोत गुरु प्रसाद भरम का नाश नानक तिन में अह विश्वास। संत जना का बेकन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता दस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सकली उत्पात। तिस पावे दा करे विस्तार तिस पावे ता एक ओंकार अनकला लखी न जाए जिस पावे दिस लय मिलाए। कब निकट कमन कही है दूर आपे आप भरपूरन तरगत जिस आप जनाए नानक तिस जना बुझाए। सर्वभूता वरतारा सरण ना पेखन हरा सकल समग्री जा कतना आपन जसा भी सुना। आमन जान खेल मनाया आज्ञाकारी की नी मैं सबके मद लिप्त रह जो कुछ कहना सुहा पेख है। आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जा पावे ताले इस मय इस हुए सुना ही बुरावर कहो किने कुछ करा। आप ला कर दूतत ने किया पे जाने अपने जी की आप साझधारी सब साज ओत पोता अपन संगराज। ताकि गतमित कही ना जाए दूसर हो सो जी पाई जिसका किया सब परिवार गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिसदा सुख होए आप मलाय लय प्रभ सोए ओतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का एह स्वाव जन के संगत आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म ने कट कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। आसन त्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो। हर तन के परलि हो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पच परमानंद। नरक निवारो दारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन मलिक लाल हिरदन सुन दुख मावत होत उधार आप तरह लुके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द ना हदवा जय सुन सुन आनंद करे प्रभ का जय। प्रगटे गोपाल महात कै माथे नान कुदरे तिन कैसा ते शरण जोग सुन सर नहीं आए कर कृपा प्रभाव मिलाए। मिट गए बैर भय समरे नमृत नाम साध संगलैन सु प्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होय सेवक के सेव। आल जंजाल बेकार ति रहते राम नाम सुन रसना कैथे कर प्रसाद या प्रभधारी नानक ने भी खेप हमारे। रब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमी सहज गोविंद गुण नाम जसमन वसै सोहो तनिधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होय प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब तियुज पाए स्थान वाहो न हो वे अमर जान। हर तन खाड़ तो लैजन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सकल ते उदास। सुंदर चतुर तत्काबेता समदर्शी एक दृष्टिता एहि फल तिस जन

संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्तक करम प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाई प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दिही तत्काल उदारे।

तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले, सो कहो तल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसियाए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों जटियै, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटियै, सज्जन सच्चा पात साहो, सिर साहां दे साहो, जिस पास बहिठियां सोही है, सब ना दा वे साहो, सतना श्री वाहिगुरु साहिब जी, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

अविनाशी परमान में राख मानु कित प्रीतिया कित स्थे पर नाही किस को सर्व निरंतर को सोया पे भी नाया पे दाना गैर गबेर के सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपार दा दयाल बख्शांद सातरे के चरने पाओ नानक है मन हो न राम मन सब अनुसरण जोग जो कर पाया सोई होगा अर्न भरन जा कर त्रिफो तस्कम तरना जान होर अण द्रोप मंगल सत जा कै सर तुख सुनिय करता कर राज मै राजोग मैं जोगी तमित बिसर ग्रह समय भोगे तय तय भगत सुख पाया नानक ते सब अग्नियंत न पाया जाग लीला की मित नाहे सगल देव हारे अव गाहे पिता का जन्म के जान पूत सुगल पुरो अपने सोता समत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाव त्या वैसे ते गुण मैं जा को परम अजन मेरा फिर आवै जाय ऊज ने तिसके आसान जय सत नावै तय सा नानक जान नाना रूप नाना डाके रंग नाना फेक रंग रंग नाना विद गिन विस्तार प्रभ अपना सी कंकार नाना जुत क्रेख न माहे पूर रहे पूर्ण समठाए नाना विद कर वत बनाई अपन कीमत आपे पाए सब कर तुसके सब तुसके ठाव जब जब जीव नान घर नाव नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुरा नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरी स भव नाम के सम उदरे सुन सरवन कर कर पर से अपने नाम लाए नान चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत के बल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाग रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मल सबरत सहस भले सत नाम प्रकाश सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाए सत वचन साधु उपदेश सत जन जागृत प्रवेश सत नृत पूजा जय को नाम जापत की गत होए आ सत की असा सत आप जाने अपनी मित गात जिसके सृढ़ सो करने हार अपना भूल करते विचार।

कहत कबीर सुनहो रे संत खेत ही करहो निबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुड़ नाम पवजल फेरा सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है दुध डिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पात साह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है

0: भगत जन के मन विश्राम रहाओ।
1: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे,
0: प्रभ के सिमरन दुख जम नसे,
1: प्रभ के सिमरन काल पर हरे,
0: प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे,
1: प्रभ सिमरत कछ बिगर न लागे,
0: प्रभ के सिमरन आन दिन जागे,
1: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे,
0: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
1: प्रभ का सिमरन साध के संग
0: सर्व निदान नानक हर रंग,
1: प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद,
0: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध,
1: प्रभ के सिमरन बिन से
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा,
1: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी,
0: प्रभ के सिमरन दरगे मानी,
1: प्रभ के सिमरन होए सफला,
0: प्रभ के सिमरन सफल फला,
1: सिमरे दिन आप सिमराए,
0: नानक तांगे लागो पाए,
1: प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा,
0: प्रभ के सिमरन उदरे मूचा,
1: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे,
0: प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे,
1: प्रभ के सिमरन नहीं जमतरासा,
0: प्रभ के सिमरन पूरन आसा,
1: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए,
0: अमृत नाम रित माए समाए,
1: प्रभ की बसे साध की रसना,
0: नानक जन का दासन दसना,
1: प्रभ को सिमरे से धनवंते,
0: प्रभ को सिमरे से पतवंते,
1: प्रभ को सिमरे से जन परवान,
0: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रदान,
1: प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे,
0: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे,
1: प्रभ को सिमरे से सुखवासी,
0: प्रभ को सिमरे सदा बनासी,
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
0: नानक जन की मंगेर वाला,
1: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी।

0: अबर कर तू सगली जमडाने
1: गोविंद भजन में माने
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सोए
0: चार पदार्थ जे को मांगे
1: साध जना की सेवा लागे
0: जे को अपना

0: एको जन मरंत डरे
1: साधना की शरणी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल परख में।

0: అష్టపది
1: రమయ్యా కేకుల్ చేత ప్రాణి
2: కవన మూలతే కవన దృష్టాని
1: జిద్దు సాల్ స్వార్ సంగారయా
2: గర్భగన మే జినే వారయా
1: బార్ వ్యవస్థా తుద్ ప్యారే దూత
2: పరజోపన భోజన సుఖ సూద
1: విద్ ప్యా ఉపర సాక్ సేన
2: మొక్క ప్యా బెట కో దేన
1: నిర్గుణ కు कुछु न बुझे
2: बागचले तो नानक सीजे
1: जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
2: सत प्रात मीत बनता संग हसे
1: प्रसाद पिए शीतल जला
2: सुखदाई पवन पाप का मुल्ला
1: जे प्रसाद पोगे सब रसा
2: सकल सामग्री संग साथ बसा
1: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
2: तिसे त्याग अवर संग रचना
1: ऐसा दोख मुड अंध व्यापे
2: नाने काट ले उपर व्यापे
1: आद अंत जो राखन हारे
2: तिसो प्रीत न करे गुहारे
1: जाकी सेवा नव निर पावे
0: तासे ओ मूड़ा मन नहीं लावे
1: जो ठाकर सत सदा हजूरे
0: ताके ओ वंदा जानत दूरे
1: जाकी टहल पाए दरगे मान
2: तिसे विसारे मुक्त जान
1: सदा सदा ए पुल्लन हारे
2: नानक राखन हारे पारे
1: रतन त्याग कौडी संग रचे
2: साच छोड़ झूठ संग मचे
1: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने
2: जो वन सो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे
2: सांग साई तिस पर हरे
1: चंदन लेप उतारे तोए
2: गाता प्रीत पसम संग होए
1: अंधकूप में पतित विकराल
2: नानक ताड ले ओ प्रभु ध्याल
1: करतूत पशु की मांस जात
2: लोक बिचारा करे दिन रात
1: बार पेख अंतर मल माया
2: छप सनाई कछ करे छपाया
1: बार ज्ञान ध्यान स्नान
2: अंतर व्यापे लोभ स्वान
1: अंतर ज्ञान बार तन स्वान
2: अंतर अगन बार तन स्वान गल पातर कैसे तरे था
1: जाके अंतर बसे प्रभ आप
2: नानक तेजन सहज समात।

0: भगवत पर पवन
1: नहीं हो तो वहाँ उस गवन
0: करतार करना में दीन बेंती करे
1: नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाय सो आवे न चीत
1: जो राई ता से प्रीत
0: के ग्रह भीतर बसे
1: अंध केल माया रग रस
0: तिरकड़ माने मने प्रतीत
1: काल न आवे मुड़े चीत
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह।

0: पिता हम बारक तेरे
1: तुमरी कृपा में सुख घनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सुतरे।

0: ऐसे आप न करे।
1: आवत जावत जन में मरे,
0: जिसके अंतर बसे नंकार,
1: इसकी सीख तरे संसार,
0: जो तुम पाने तिन प्राप जाता,
1: नानक उन्हें चरण पर आता।
0: करो बेंती पार ब्रह्म सजाने,
1: अपना किया आपे माने,
0: आपे आप करत निवेरा,
1: किसे दूर जनावत किसे आवत नेरा,
0: भाव से अनुप सकते रहत,
1: सब कुछ जाने आत्म की रहत,
0: इस पावे इस लय लड़ाए,
1: थान तन अंतर
0: समाए।

0: ये प्रसाद छतिये अमृत खाए
1: को रख मन माए
0: ये प्रसाद सुगंधत तन लावे
1: तिसको सिमरत परम गत पावे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर
1: त्याए सदा मन अंदर
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: ये प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्या बन जोग
0: ये प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: तिसे त्याग का त्या बर लवावे
0: प्रसाद सुख सह सोई जय
1: माने आठ पैर ताका जस गावी
0: ये प्रसाद सब को माने
1: मुक्ता को जस रसन बगा

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्प को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक
1: जोग सुधा को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का ये गुनाओ
1: नानक जो पाव का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होय परगास
1: जैसे तारू पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अपमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक दिन प्रभु आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी।

0: ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी को परास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होय सुफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत
1: ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा अनंत
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्शवट पागी पाये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाये
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याकर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

0: कोट होए पुजारी,
1: कई कोट चार व्यवहारी,
0: कई कोट पे तीर्थवासी,
1: कई कोट परम प्रमे उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते,
1: कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे,
1: कई कोट कब का विचारे,
0: कई कोट नूतन नाम त्यावे,
1: नाने करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पे अभिमानी,
1: कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर,
1: कई कोट अभिगातम निकोर,
0: कई कोट पर धर्म को हरे,
1: कई कोट पर दुख न करे,
0: कई कोट माया श्रम माहे,
1: कई कोट पर देश पर माहे,
0: जित लाभो तित तित लगना,
1: नाने करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्धि जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
1: कई कोट पाथर वृक्ष जाए,
0: कई कोट पवन पानी वे संतर,
1: कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट सस्य सूर्य खेतर,
1: कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर,
0: सगल सामग्री अपने सूत तारे,
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे,
0: कई कोट राजस्तामक सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरते असासक,
0: कई कोट किए रतन सुमंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जान,
0: कई कोट किए चिर जीव,
1: कई कोट गिरी मेल स्वरण थी,
0: कई कोट जखे इनर पिसाच,
1: कई कोट भूत प्रे सुकर मृगात,
0: साते नेरे सबूते दूर,
1: नानिका पल पत्रिया परपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
1: कई कोट बोजोनी फिरे,
0: कई कोट बैठत ही खाए,
1: कई कोट काले थक पाए,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया मैं चिंत,
0: जय जय पाना तय तय राखे,
1: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे,
0: कई कोट पे वैरागी,
1: राम नाम संग दिन लिवलागी,
0: कई कोट प्रभ को खो जनते,
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास,
1: इनको मिलियो प्रभ अविनाश,
0: कई कोट मांग है सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको है आप सुपर सन,
1: नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी और खंड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मंड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जगत की नौ विस्तार,
0: कई बार पसरे उपासार,
1: सदा सदा एक अंकार,
0: कई कोट की ने बहुपात,
1: रखते होए ब्रह्मा समात,
0: कांत न जाने कोए,
1: आपे आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
1: तिन हो वति आत्म परगास,
0: कई कोट तत् के बेते,
1: सदा निहारे एको नित्रे,
0: कई कोट नाम रस पीवे,
1: अमर पैसा सद ही जीवे,
0: कई कोट नाम गुण गावे।

0: पति तुधारे
1: आप करे आपन बिचारे
0: दुआ सिरियां का आप स्वामी
1: खेले भिक्षे अंतर जामी
0: जो पावे सो कार करावे
1: नानक दृष्टि अवर ना आवे
0: कौ मन ते क्या होया वे
1: जो तिस पावे सोई करावे
0: इसके हाथ होए ता सब किचले
1: जो तिस पावे सोई करे
0: अनजानत बिकिया में रचे
1: ये जानत अपने आप बचे
0: पर मैं पूला दे दिस्तावे
1: निक माए चार कुंड फिर आवे
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे
1: नानक तेजन ना मिले
0: किन में नीच कीट को राज
1: पार ब्रह्म गरीब निवाज
0: जाता देश कछु न आवे
1: जिस तत्काल दे जिस प्रगटावे
0: जा को अपनी करे बख्शीश
1: ताका लेखा न गणे जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास
1: गड़ गड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास
0: अपनी बन ते आप बनाई
1: नानक जीवे देख बढ़ाई
0: इसका पल नहीं साथ
1: कर्ण करावन सर्व को नाथ
0: आज्ञाकारी बपुर जियो
1: जो तिस पावे सोई फुन थियो
0: कबो ऊंच नीच में बसे
1: कबो सोग हर करंग रसे
0: कबो निंद चिंद व्यवहार
1: कबो उपकास प्याल
0: कबो बेता ब्रह्म विचार
1: नानक मिलावन हार
0: कबो निर्द करे पोपात
1: कबो सोए रहे दिन रात
0: कबो महाक्रोध विकराल
1: कबो सर्प की होत रवाल
0: कबो ओए वे बड़ राजा
1: कबो भिखारी नीच का साजा
0: कबो आपकी रत में आवे
1: कबो पला पला कहावे
0: ज्यो प्रभ राखे तिमी रहे
1: नानक सच कहे
0: कबो होए पंडित करे बख्यान
1: कबो मोतारी लाए ध्यान
0: कबो तट तीरथ स्नान
1: कबो सीसा दकमुख ज्ञान
0: कबो कीट हस पतंग जिया
1: अनेक जोन पर मैं पर मिया
0: नाना रूप जो सुहा की दिखावे
1: जो प्रभ पावे तिमे निचावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कबो साथ संगते पावे
1: उस स्थान ते बोर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास
1: उस स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
0: जो जल में जलाए खटाना
1: त्यों ज्योति सक ज्योत समाना मिट गए गावन पाए बिश्राम नानक प्रभु के सतगुरु।

0: नानक गर्भ गले
1: जिसके अंतर राज विमान
0: सो नरक पाती हो सो आनंद
1: जो जाने में जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आपस को करवंत कहावे
0: जन्म मरे वो जोन प्रभावे
1: धन पुं का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी होवे
0: नानक यहाँ मुक्ता के सुख पावे
1: धनवंत होए कर गर्भावे
0: दिन समान के संग न जावे
1: हो लश्कर मानुक ऊपर करे आस
0: पल पीतर ताका होए विनाश
1: शक्ति आप जने बलवंत
0: दिन में होए जाए पसमंत
1: किसे न बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे।

0: करे अहंकार,
1: नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार,
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं डरवे,
1: हर दरगे को कैसे गवे,
0: आपस को जो पला कहावे,
1: किसे पलाई निकट न आवे,
0: सबकी नैन का मन होए,
1: तो नानक ताकी निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझते कुछ होए,
1: तब इसको सुख नाही कोए,
0: जब बेजाने मैं कुछ करता,
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता,
0: जब धारे को बैरी मीत,
1: तब लग निश्चल नाही चीत,
0: जब लग मोह मगन संग माए,
1: तब लग

0: न जाए।
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखियानी,
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदे किने बिरले चीना,
1: पला पला पला तेरा रूप
0: असुंदरिया पारे अनूप,
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बानी
0: कट कर सुनी सरवण बखिया।

0: के दुखन जानते नहीं छूटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए।
1: संत के दुखन मत होए मलीना,
0: संत के दुखन सो बाते हीन।
1: संत के हते को राखे न कोए,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संसग निंदक भी तरे।
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग जो लवे।
1: संत के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन तृष्ण जोन केर माए।
1: संत के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सबको चले।
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच न जाए।
1: संत दुखी का ताको नाहे,
0: नानक संत पावे ता होए भी गत पाए।
1: संत का निंदक महात ताई,
0: संत का निंदक टिकण न पाए।
1: संत का निंदक महा त्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुखी आर दीन।
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग।
1: संत की निंदा दोख में दोख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख।
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित।
1: संत के देखी को दान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे।
1: संत का दुखी महाकारी,
0: संत का दुखी सदा भिकारी।
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत की दुख ना सुखते टरे।
1: संत के देखी को ना ही ठाओ,
0: नानक संत पावे ता ले मिलाए।
1: संत का दुखी आद बीचते टूटे,
0: संत का दुखी किते काय ना पहुंचे।
1: संत के दुखी को उदाहरण फरमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए।
1: संत का दुखी अंतर ते थोता,
0: यो सास बिना मृतक की लोथा।
1: संत के दुखी को जड़ कुछ नाही,
0: अपन बीजा पे ही खाए।
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
0: नानक संत पावे ता ले उबार।
1: संत का दुखी इंबल लाइए,
0: यो जल बिन मछली चढ़ाए।
1: संत का दुखी भुखा नहीं राजे,
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटे कल्ला,
0: जो बुआर तिल खेत माए दोहेला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथिया कहत।
1: किरत निंदका तुर ही पेया,
0: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइये,
0: संत का दुखी ना मरे ना जवाइये।
1: संत के दुखी के पूजे न आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा।
1: संत के दुखी को दृष्ट कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए।
1: कित न मिटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब कट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: प्रभु की उसत करो दिन रात,
0: से दियावो सा।

0: जगाए
1: बोर न तिसना लागे आए
0: मारे रखे को आप
1: मानो के किच नहीं हाथ
0: तिसका हुकम बुझ सुख होए
1: तिसका नाम रा कंठ पर होए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिगन न लागे कोए
0: उस्तत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सोहेला कर ले जियो
0: नैनो पेक ठाकुर का रंग
1: सार संग बिन से सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: कर हर करण शरण हर कथा
1: हर दरगे नानक उजन मथा
0: बड़ पागी ते जन जग माए
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: नाम नाम जो करे विचार
1: चेतन मंत गनी संसार
0: मंथन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: इत उत की यो सोजी जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या
1: नानक तिने निरंजन जान्या
0: गुर प्रसाद आपन आप सूझे
1: जिसकी जानो तिसना बूझे
0: सास संग हर हर जस कैत
1: सर्व रोग ते हर जन रहत
0: हर दिन कीर्तन केवल बख्यान
1: गृहस्थ में सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आसा
1: जिसकी कटिए जम की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ मंचित आवे
1: सो संत सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किससे डरे
0: जैसा था तैसा दिष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सो दस सिजिया
1: गुर प्रसाद ता सब बुझिया
0: जब देखियो तै सब कुछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई अस्तूल
0: न कि जन्मे न किछ मरे
1: आपन चलता पी करे
0: आवन जावन दृष्ट अदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
0: आपे आप सगल में आप
1: अनिक
0: अबनासी नाई किछ खंड
1: तारो ब्रह्मांड
0: अलग अपेद पुरख प्रताप
1: आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो शोभावंत
1: सगल संसार उतरे तिन मंत
0: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण
0: आपे मेल रहे कृपाल
1: उनका सब जा पहने हाल
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसनु कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तिन पुरख को उत्तम कर्म
0: जो किछ करे सो प्रभ के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: सहस पाए होवे सो होए
1: करने हार पछाने सोए
0: प्रभ का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सात ऐसा दिष्टाना
0: तिस से उपजे तिस माए समाए
1: ओए सुख निदान उनु बने।

0: जिन हार जाने गवार,
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग,
0: नानक सोजन सदा रोग,
1: जो मंदिर को थामे थम्मन,
0: जो गुर का शब्द मने अस्तमन,
1: जो पखान नाव चढ़ तरे,
0: प्राणी गुर चरण लगन स्तरे,
1: जो अंधकार दीपक बरगास,
0: गुर दर्शन देख मन होए बिगास,
1: जो माँ उद्यान में मारक पावे,
0: जो साधु संग में ज्योत प्रगटावे,
1: तिस संतन की बाछो तूर,
0: नानक की हर लोचा पूर,
1: मन मूरख आए बिल्लाइए,
0: पूरब लिखे का लिखिया पाइए,
1: दुख सुप्रभ देवन हार, जो कुछ करे सोई सुखमान,
0: भूला काय फिरे आजान,
1: कौन बसताई तेरे संग, राम नाम जब हृदय माए,
0: नानक पासे ती कर जाए,
1: जिस वखर को लैन तू आया,
0: राम नाम संतन कर
1: आया, तज अभिमान लियो मन मोल,
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संत संचार,
0: अवर त्याग बिखिया जन जाए,
1: तन तन कहे सब कोई,
0: मुख उजल हर तरके सोए,
1: ए व्यापार विरला व्यापारे,
0: नानक ताके सत बलिहारे,
1: चरण साध के तो पियो,
0: अरब साध को अपना जियो,
1: साध की दूर करो स्नान,
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान,
1: साध सेवा वड पागी पाइए,
0: साध संग हर कीर्तन गाइए,
1: अगन बिघनते साधु राखे,
0: गुण गाए अमृत रस चाखे,
1: ओत गए संत दरियाया,
0: सर्व सुख नानक ते पाया,
1: नितक को जे वालन हार,
0: भूखे को देवत आधार,
1: सर्व निधान जाकी दृष्टि माए,
0: पूर्व लिखे का लेना पाए,
1: सब कुछ तिसका करने जो,
0: तिस बिन दूसर हो आना हो,
1: जब जन सदा सदा दिन रहनी,
0: सत्य उच्च निर्मल
1: कर कृपा जिसको नाम दिया,
0: नानक सोजा निर्मल थी,
1: जाके मन गुर की प्रतीत, भगत भगत सुनिए ते लोए,
0: जाके हृदय को होए,
1: सच करनी सचता की रह, साची दिस साचा आकार,
0: सच बनते साचा पसार,
1: पार ब्रह्म जिन

0: राष्ट्रपति
1: अविनाशी प्रमाण मेरा
0: मन की तो प्रीत
1: परे नाई किछ कोए
0: सर्वनिरंतर को सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गहर गंभीर ही जाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा दान लिया अनुसंद
1: साथ तेरे की चरनी पाओ
0: नानक के मणि उंधराओ
1: मनसा पूर्ण चरना जोग
0: जो कर पाया सोई हो
1: धर्म पल जाका नेतर फो
0: किसका मंत्र जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सब जागे
0: सर थोक सुनिए कर ताके
1: राज में राज जोग में जोगी
0: तीसरे कृष्ण में भोगी
1: त्याए त्याए पगते सुख पाया
0: नान की सुरता के अंत न पाया
1: जाकी लीला की पतना है
0: सगल देव हारे उगाए
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोई अपने सूत
1: सुमत ज्ञान त्यान जन दे
0: जन दास नाम त्यावे से
1: गुण में चाको भरमाए
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: स्थान
0: जैसा जावे तैसा नानक जाने
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे रंग
1: नाना वेद किनो विस्तार
0: प्रभु नाशी एक ओंकार
1: नाना चलत करे किन माहे
0: पूरे ओ पूरन सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब नट तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब तक जीवे नानक खा
1: नाम के धारे सगले जंत
0: नाम के धारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगल तार
1: नाम के धारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उदरे संसार भवन
1: हर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नान चौथे पाद में सो जन गत पाए
1: सत जाका सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रदान
1: भूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरख समाय समाय
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत तत्पत
1: करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए किसे सपली
1: सत नाम पर का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत्य जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोए
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी शिष्य करने हार
0: अवर न भूल करत विचार
1: सत की मित न जाने किया
0: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
1: दुश्मन विषम वह विषमाद आपके रंग राज चल रहे कोई दाते दुख काटन हार
0: जाके संग करे संसार
1: जनता सेवक सो बड़ पागी
0: जाके संग एक

0: अमर दृढ बैठे होए संत,
1: सो गुण बेअंत कीमत नहीं पाए,
0: नानक जिस पावे किस लए मिलाए,
1: जीवाए को सदा नेक,
0: सत पुरख पूर्ण विवेक,
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी,
0: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी,
1: निरहार निर्वैर सुख दाई,
0: ताकी कीमत किने न पाए,
1: अनक भगत बंधन नित करे,
0: चरण कमल हृदय सिमरे,
1: सद बलहारी सतगुर अपने,
0: नानक जिस प्रसाद सा प्रभु जपने,
1: ये हर रस पावे जन कोए,
0: अमृत पीवे अमर सोए,

0: हर सिमरन एक सिमरन
1: करो विचार
2: एक सिमरन में दार
1: और बाप सब मीत बसारो
3: चरण कमर इतक में दारो
1: कर्ण काल सुपर सुप्रभ सुमरा
3: जिड़का गयो नाम हर वथ
1: ए तन संचो हो भगवंत
3: संज ना का निर्मल मन
1: एक आस राखो मन माहे
3: सर्व रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार को कुछ तावे
2: सो तन हर सेवा ते पावे
1: सुख सुख साधु प्रीत
2: सो सुख साधु संग प्रीत
1: जसो बापो करे पली करनी
2: सासो बाप ज हर की सरनी
1: अन को पावी रोग ना जाए
2: रोग मिटे हरे अवकद लाए
1: सर्व निदान में हर नाम दान मन पर बोधे हर के नाए ताको कोई न लागे कोई
3: जाके रिटे बसे सोए
1: कल ताती ठांडा हर नाओ
3: सिमर सिमर सदा सुख भाओ
1: गोबिन से पूर्ण होए आस
3: भगत पाए आत्म प्रकाश
1: हित कर जाए बसे वनासी
3: को नानक काटी यम फसी
1: तत् विचार कहे जन साचा
2: जन्म मरे सो काचो काचा
1: आवा गमन मिटे पब सेव रतन जन्म का होए आधार
3: है सिमर प्राण
1: को पावन छूटन हारे
3: सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करो मन मान लाए संत धारण तेरे तना
3: तू सपटावे मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटुंब अनबनता
3: इते कहो तुम कम सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
3: इते कहो कम छटकार
1: अस अस्थी रत सवारी
3: नाम झूठ पर सारी
1: ना बगाना
3: नाम विसार नानक पिछताना
1: गुर की मातू ले आने
2: भक्त बिना वो डूबे आने
1: हर की भगत करो मन मीत
2: निर्मल होए तुम्हारो जीत
1: चरण कमल राखो मन माहे
2: जन्म जन्म के खिल बिख जाए
1: आव जपो अवरा नाम जपाओ
3: सुनत कहत रहत गत पाओ
1: सार पुत सार को नाओ गुण गाओ तेरी उतर समैल
3: मिल जाए हमें बिखेल
1: हो अचिंत बसे सुख नाल साढ़ से आण सगली मना हर पूंजी सच करो विचार
3: सुन सुख दर गए जयकार
1: सर्व नरातर एको देख
3: कौन नानक जाके मस्तक लेख
1: एको जाप एको सलाह।

0: से प्रदान साध जना की मांगो तूर
1: में सदा पूर
0: सदा सदा प्रभ के गुण गाओ
1: सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ।

0: बंधन काट मुकत जन भया
1: जन मरण दुख परम गया
0: इच पुन्नी सरदा सब पूरी
1: राव रे असल संग सूरी
0: जिसका सातन लिया मिलाए
1: नानक भक्ति ना समाए
0: सो क्यों बिसरे जी घाल न भाने
1: सो क्यों बिसरे जी किया जाने
0: सो क्यों बिसरे जिन सब किच दिया
1: सो क्यों बिसरे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे
2: गुर प्रसाद को मिला लाके
0: सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे
2: जन्म जन्म का टूटा गांडे
0: गुर पूरे तत्यो बुझाया
1: प्रभु अपने नानक
2: जन कहया
0: साजन संत करो यो काम
2: मान त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
2: आप जपो अपना नाम जपावो
0: भगत पाए तरिए संसार
2: भक्ति तन होसी चार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम
2: उड़ जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होवत नास
1: नानक नाम जपो गुणतास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ
1: मन तरे अंतर ही स्वाओ
0: नेत्रो पेख दरस सुख होए
1: मान मिक्षे सात चरण

0: पाप पुन तब कहते होता
1: जब तारी अपन सुन समात
0: तब वह ब्रोक संक मात
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
0: नहर सो को किसे व्यापत
1: जब अपन आप आप पार ब्रह्म
0: तब वो कहाँ की सोवत परम
2: अपन खेल आबर तीजा
0: नानक करने हरन दूजा
1: नानक करने हरन दूजा
0: जब बंद मुस्को किसको गनी
2: मंद मुक्त को गनी
1: जब एक हरि अगम अपार
2: तब नरक स्वर्ग को कौन अतार
1: जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए
0: तब शिव शक्त को कि ठाए
1: जब आप आप अपनी जोत धरे
2: तब कवन डर कवन कत डरे
1: अपन चलित आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अपना सी सुख अपन आसन
0: ए जन्म मरण को कहां विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभु सोए
0: तब जम की त्रास कहो कि सोए
1: जब अवगत अगोचर प्रभु एक
2: तब चित्तर गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ नरंजन गोचर गाधे
0: तब कौन छुटे कौन ब्रह्मन बाधे
1: आपन आप आप ही अचरजा
0: नानक आपन रूप आप ही परजा
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
2: तय बिन मेल को क्या तोता
1: जय नरंजन निरंकार निर्वाण
2: तय कौन को मान कौन अभिमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: तय चित्तन लागत को कीश
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: तय किसे भूख अवंत तावे
1: रावण करने हार
0: नानक करते का नाही सुमार
1: अपनी शोभा जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: तब कवन माई बाप मित्र सत पाई
1: जय सर्व कला आप

0: सरस्वती
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आपे का विस्तार
1: जातिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय
0: अपने पाणे ले समाए
1: तुम ते बिन नहीं कुछ होए
0: अपन सुसर जगत प्रोए
1: जाको प्रभु जियो आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत्का बेता
0: नानक सगल से टका जेता
1: जी जन सप्ता के हाथ
0: दीन दयाल नाथ को नाश
1: जिस राखे तिस कोए न मारे
0: सो मुआ जिस मनो सारे
1: तिस तज अवर कहा को जाए
0: सब श्री एक निरंजन जाए
1: जी की जुगत जाके सब हाथ
0: अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण निदान बेअंत अपार
0: नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रहे दयाल
0: प्रभुवत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: पित पाले जी अनभो बात जिस पावे तिस ले मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या
0: कर्ण हार नानक जान्या
1: जन लागा हर एक नाए
0: जिसकी आस न बिठी जाए
1: सेवको सेवा बनियाई
0: हुकम बूझ परम पर पाई
1: इससे ऊपर नहीं विचार
0: जाके मन बस्या अहंकार
1: बंधन तोर बह निर्वैर
0: अंधन पूजे गुरु के पैर
1: ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले
0: नानक हर प्रभु आपे मेले
1: साथ संग मिल करो आनंद
0: गुण गाओ पर परमानंद
1: राम नाम तत करो विचार
0: दुर्लभ देखा करो उदार
1: अमृत बचन हर के गुण गाओ
0: प्राण तरण का हे सुहाओ
1: आठ पहर प्रभ पे क्यों नेरा
0: मुटे ज्ञान विषय अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय बसाओ
0: मन से नानंद फल पाओ
1: हलत पलत दुले सवार
0: राम नाम अंतर उदार
1: पूरे गुर की पूरी दीख्या
0: जिसमें बसे साज परीख्या
1: मन तन नाम जपो लिवलाए
2: दुख दर्द मन ते पहुंचाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगह निभे के तुम्हारी
1: एका टेक रखो मन माए
0: नानक बहुर ना वे जाए
1: तिस्ते दूर कहा को जाए
0: उबरे राखन हाथ आए
1: निर्भो जपे सगल बो मिटे
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
0: नाम जपत मन हो सुख
1: चिंता जाए मिटे अंकार
0: क्रिश्चन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर ऊपर डाडा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्य पूरा
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट
0: दर्शन पेख तो उदृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर रूप
1: तन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पर प्रदान
1: जिस मन वसे सो होत निहाल
0: ताके निकट न आवत।

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे है मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तह पाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों हूँ चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी

गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवड चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धी किनै नाम पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा।

संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गोजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंतु पाए। ताका रिजक आगै कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया।

कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काही मन पहु करिया उड़े उड़ आवे सैकोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खुलावे कवन चुगावे मन में।

शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिस का काटा सीसा। श्री अस्केत जगत के ईसा। पोहपन ब्रिस्त गगन ते पई। सबहिन आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा। दुस्तन दाहा गरीब निवाजा। अखल भवन के सिरजन हारे। दास जान मोहले हो उबारे। कभ्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो। आप हाथ दै मोह बचाव हो। सुखी बसै मोर परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै। सबै रन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है। चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है। मरण काल का त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले हूँ मोह राखन हारे। साहिम संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुस्तन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज

निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूल उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपा ने अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूलरा जाह वह बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुवराता, किल विख सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई, अड़िल सुनै गुंग जो जाहि सुरस न पावै, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता पावै, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार चौ पई को कहै चौ पई, संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहै मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहै हम एक न जान्यो,

गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया

जिस सिमरत सुख होय सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: श्री वाहेगुरु।
1: आपकी जैसी खादा माली माँ मातुची मत मत दरका अकाल पुरख वाहेगुरु हेज माने आधे मान दाने आधे दाने और त्यां दियो सन सन सह श्री गुरु नानक देव महाराज सन सन सह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसा पास शरीर दी जोत सन सन सह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी का कोटान कोटान कोटान शुक्र है सतगुरु जी के पातशाह जी आप जी ने सानू अमृत वेला बख्शिया अपने दर घर से लैके आए हूँ कोटान कोटान शुक्र है सतगुरु जी के पातशाह जी और दित्तियां हुई वासना का दिते हुए स्वासना का सतगुरु जी के पातशाह जी और महाराज जी और सिर ते भी भरिया जाएंगे अपनी सेवा आप लो सतगुरु जी के पातशाह जी आग्रह बख्शो सतगुरु जी का पाठ कर दिते हुए पाणी पढ़ दी अपनी बाणी शुद्ध स्पष्ट आप ही पढ़ा लेंगे महाराज जी अपने पाने पातशाह जी उन्हें मेरिया भी मेल करायो जिन्हें मिले आप जी का नाम से दिया वह गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सन्मार्ग माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
2: गुरुदेव
1: सखा ज्ञान पंचन
2: गुरुदेव अंदर सोदरा
1: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मन निरोधरा
2: गुरुदेव सांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पास परस्परा
1: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मंजन परंपरा
2: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा
1: गुरुदेव आज
2: जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उतरा
1: गुरुदेव
2: संगत प्रभ मेल कर कृपा मूड़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा
1: गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड़ पापी जित लग तरा
2: गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु।

मंदस है, प्रभु के सिमन दुश्मन डरे, प्रभु के सिमन अंधन जागे, प्रभु के सिमन दुख ना संतापे, सर्व का नानक हर रंग, प्रभु के सिमन ज्ञान ध्यान तत्वोध, प्रभु के सिमन विंत है दूजा, प्रभु के सिमन करके मानी, प्रभु के सिमन सफल फला, नानक काके लागो पाए, प्रभु के सिमन उतरे मूचा, प्रभु के सिमन सब कुछ सुजे, प्रभु के सिमन पूर्ण आशा, अमृत नाम अमृत माए समाए, नानक जन का दास दसना, प्रभु को सिमरन से पद बंदे, प्रभु को सिमरन से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरन सर्व के राजे, प्रभु को सिमरन सदा विनाशी, नानक जन की मगेर वाला, प्रभु को सिमरन सत बलिहारी, प्रभु को सिमरन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरन निर्मलिता, प्रभु को सिमरन बसे हर नेरे, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभु के सिमरन कभू ना चूरे, प्रभु के सिमरन सहज समाणी, प्रभु के सिमरन कमल विकासन, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, नानक दिन दिन सनी पया, हसी मन लग वेद उपाय, हसी मन नी चौंक उठ जाते, सिमर सिमर हर कारण करना,

ज्ञान पाइए साध के संग हर का नाम हुआ संतोषा हर का नाम संग उदियारा हर का नाम दे नाल बशानु नैन के नाम की तुम ऊपर शाम तैनान घर हर अमृत बरखे संत जना के मन विश्राम हर के नाम ग्रजन कोट हर हर अवसर साध पाद पार ब्रह्मन की नो दान नानक जन के वृत्त विवेक हर के नाम जन को तृप्त भोगत हर नाम जपत को परिणाम भंग

ज्ञान दर्शन के तेज रहे काम दे हर हर उन गाव नाम सुध दर्द दुख लता संत प्रताप दुख सब न से संत

0: मद प्राण न्यौली कर्म करे बासन निमक निमक कर शीर कटावे हरिये नाम संसर कछ नाहे मन कामना तीर दे छुटे सोच करे दिन सर रात इस देही को बहुत साधना करे जल तो वे बहुत अनीत मन हर के नाम की महिमा ऊच बहुत स्याण जम का पौ व्यापे एक अनेक अग्नि बुझे नाई उपयाद अवर करतूत सगली जम डाने हर का नाम जप दुख जाए काल पदार्थ जे को मांगे
1: साजना की सेवा लागे
0: जे को अपना दुख मिटावे जे को अपनी शोभा लो
1: रहे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साजना की सरनी परे
0: जन को प्रभ दास प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सब जाके मिटे अभिमान

0: सारी जिस पर आरे
1: गर्द प्रीत पसु संगोए
0: नान कर ले प्रदयाल
1: पसु की मानस जात
0: लोग बिचारा करे दिन रात
1: एक अंतर मल माया
0: सब नाय कुछ करे छुपाया
1: हर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंदर व्यापे लो

चाकर कोरक मन माए तिसको सिमरत प्रंगत पावे तिसे ध्याय सदा मने अंदर आठ पैर सिमरो तिस रसना नानक सदा ध्याय ये ध्याय मन योग तिसे ध्याय सदा बल पावे मन आठ पैर ताका जस वै बीजे मुखता को जस लसन बखाने मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म नानक पद से ती कर जावे लिवलावो तिस राम स्नेही मन सुख पावे हर हर जस कहत मन सारनी पर ठाकुर प्रभु ताके मन सास सास सिमरो प्रभु चे नानक ताकी भगत करे मन तिसमत के मानस कीजे मन तिस प्रभु को कमुना बसारी राख परोए प्रभु अपने मना उठ तो बैठ सा तिसे त्याई इहा उहा नानक तेरी रखे मन आठ पैर तिस का ध्यान मन तिस प्रभु को सास तारी सो प्रभु सिमरो सदा अनूप सो प्रभु सिमर सदा दिन रात गुरु प्रसाद नाम जस कह ये प्रसाद देखे बसमाद ये प्रसाद सुख सहजे बसना ये प्रसाद पूर्ण फल ये प्रसाद सुख सहज समावे गुरु प्रसाद नानक मन जागो प्रभु को मन मनोना बसार रे मन मूर्तता को जाप तिसे जन मन सदा है जुरे रे मन मेरे तू तासे ओ राज नानक जाप जपे जप सोए आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु दे अते कमल बगास प्रभु दे अते मत उत्तम होए

कथा सरस्वती सत्संग मल सगली खोत साधके संग पाठे सो ज्ञान सत्संग सब होत मेरा साधके संग एक ऊपर जतन नानक साधके सोबर ब्रह्म समानी साधके संग सदा पर खुले सत्संग मत समुचा साधके संग मनो होर बैन सत्संग अस्तन मर पावे सत्संग नानक प्रभु प्रसन्न साधु के संग महापुनीत

0: ज्ञानी का नहीं बनासा।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नारक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन मोहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथा ना जाय अखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख बदाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार।

0: कर निस्तार है अष्टपति
1: मिथ्या नाही रसना पास
0: मन में प्रिय निरंजन दर्श
1: त्रिया रूप न पेखे नेत्र
0: साधी जाय संसंगेत
1: न सुने कहु की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: सज बिख्या पर हरे
0: मन की बास न मानते डरे
1: जत पंच दुख ते रह
0: नान कोट मदे को ऐसा परस
1: सो जस ऊपर सो प्रसाद
0: विजन की माया दे होए पेन
1: कर्म कर तो होए न कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल भक्त की तन संग्राचे
1: तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो बुद्ध कृपाल
1: अवरा नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो ब्रह्म गत पावे
1: मोती भगवंत भगत का रंग
0: सकल त्यागे दुष्ट का संग
1: मनते बिनसे सगला परम
0: कर पूजा सकल पार ब्रह्म
1: सा संग पापा मल खोवे
0: इस भगति की माधु उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नित
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन पर बोधे
0: राम नाम आत्म है सोदे
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित वे जो नावे
1: वेद प्राण श्रीमति बूझे मूल
0: सुख बहन जाने असूल
1: जोहर ना क्यों दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सबको ज्ञान
0: जो बर नाम है जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सत्संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उतारे
0: बस प्रेत मुक्त पासर को उतारे
1: सब रोग का औखद नाम
0: रूप मंगल गुण काम
1: हो जुक्त की तेना पाइए तर
0: नानक दिस मिले जिस लिखे अंतर कर्म
1: जिसके मन पा ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत रामदास
1: अंतर राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पैदन पाया
1: सदा निक निक हर जान
0: सो दास दरगे परवान
1: अपनी दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सोची परे
1: सगल संग आत्म उदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे
0: कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उसोग
0: सदा न ते नहीं वियोग
1: ऐसा स्वन तैसी उस माटी
0: ऐसा मृत ऐसी भी खाटी
1: ऐसा मान तैसा बमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जोवरता ऐसा ही जुगत
0: नानक ऊपर कहिए जीवन मुक्त
1: ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित कार रखे तैसा दिन नाओ
1: अपे कर्ण करावन जोग
0: प्रभावे सो बनोग
1: आप होए अनंत तरंग
0: लगन जाए पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रगास
0: पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल
2: सिमर सिमर नानक पै निहाल
3: श्लोक सत करे।

हम सर्पी हो तरवार कबू बुखारी नीच का साजा कबू पला पला कहावे गुर प्रसाद नान सच कहे कबू मोहताली लावे ध्यान कबू से सालक मुखियान अनेक जोन पर में बनमियान न्यू प्रभा आवे ते बिन जावे नानक दूजा वर न कोए उस स्थान ते बोर ना आवे उस स्थान का नहीं बनास सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो ज्योति

0: सोहत बेष्टा का जंत जन्म रे बोझ ब्रह्मावे सो मूर्खंदा अज्ञान नानकिया मुक्ता के सुपावे त्रेस मन पे संग न जावे पर पितरता का हुए बनास किन में हुए जाए बसमंत धर्म रहत सरे खुआरी सोजन नानक दर के परवान धर्म पावे सगले बरतारे सगले बरतारे नरक सुर फिर अवतार हर दर्गे को कैसे गवे तिसे बुलाई निगना आवे कौन आनंद दागी दिन बल सोए तब इसको सुना ही गोए तब लगा जोन में फिरता तब लगने चलना ही जीत तब लग धर्म जैसे आए गुरप्रसाद नानक छूटे तीर्थ नावे माया पाछे पावे नेत्र दावे खप खप मरे सुपन मनोज बेचे सब काजे मटबागी से प्राप्त होए सदा सदा नानक जाप इसके हाथ का विचार आपे आप प्रभु सोए सबके दूर सबके संग आपे एक आपे अनेक नान सदी ने समाए आपे रचे सबके साथ
1: सब कुछ उसका करने यार
0: थान थन अंतर एक के सोए कौत करे रंग पार नानक कीमत कहना जाए गुरप्रसाद की ने बख्यानी कोट में देखे ने बेले जीना आज सुंदर बार रूप निर्म कड़कड़ सुनी से

0: संत का दुखी बिगट रूप हो जाए,
1: संत का दुखी को दर गए मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाई है,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है,
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा,
1: संत का दुखड़ चले नरासा,
0: संत के दुख न दृष्टि को
1: जैसा पावे तैसा कोई हो।

0: बेथी सब जान
1: जेवन कोए के भगवान बहुना तृष्णा लागे आए मान के कृष्ण ही हाथ जिसका नाम रख कंठ पर रोए नानक बिघन लागे कोए कर मन मेरे सत बिहार
0: रसना अमृत पियो
1: सदा से ले कर ले जियो
0: ठाकुर का रंग
1: सात संग बिन से सब संग
0: चलाओ मार गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर कर्म सर्वन सर्वन हर कथा
1: हर दरगे नानक उज्जल मथा
0: बागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: नाम जो करे विचार
1: से धनवंत गनि संसार
0: तन मुख बोलो हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: को एक एक पछाने
1: ए तो दिगे सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या
1: नानक ते ने निरंजन जाने
0: साथ आपन आप सूजे
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: सास संग हर हर जिस कहते
1: सर रोते हो हर जन रहत
0: कीर्तन केवल बखियान
1: ग्रस्त में सोई निर्वाण
0: जिस जन की आशा
1: जिसकी कटके जम की फासा
0: ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ मंचित आवे
1: वो संत से ला नहीं जलावे
0: प्रभ अपनी कृपा करे
1: जिनको किस ते डरे
0: जैसा सत्य साधिष्ठाया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: ब्रह्मांड
1: अलख
0: पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए नानक

0: जैसा जनावे तैसा नानक जान, नाना बेकर एक रंग प्रभु विनाशी एक अंगार, पूरे हो पूर्ण सब ठाए अपनी कीमत आपे पाई, जब जब जीवे नानक नाम नाम के तारे कण ब्रह्मांड,
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान,
0: नाम के तारे सकल आकार, नाम के संग उतरे संसार बन, नानक चौथे पद में सोच जन गत पाए, पुरुष सत केवल प्रधान सत पुरुष समान समाणी, मूल सत सत उत्पत जिसे मिलाए जिसे संपली, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत जन जन जागे हृदय प्रवेश, नाम जपता ही गत होए आपे जाने अपनी मिज गत, अब न बुझ गत विचार, नान उस पावे सो बतिया, जिन बुझा जाए स्वाद, गुर के वचन पदार्थ ले जागे संग करे संसार,

0: जन के किल बिख जाहे
1: जपो अवरा नाम जपावो
0: संत कहत रहत गत पावो
1: सार पूत सत हर के नाओ
0: सहस भाई नान गुन गाओ
1: गुण गाओ तेरी उत्तर स्मैल
0: दर्स जाए हूं मैं बिख फैल
1: चित बसे सुख नार
0: सास करासा नाम स्मैल
1: श्यान सगली मना
0: सास संग पावे सच तन
1: हर पूंजी सच करो बिहार
0: इया सुख दरगे जे कर
1: निरंतर एको देख
0: ओ नानक जाके मस्तक लेख
1: एको जप एको सलाही
0: एक सिमर एको मन आहे
1: के गुण गाओ अनंत
0: मन तन जापे एक भगवंत
1: को एक एक हर आप
0: पूरन पूरे प्रभ्याप
1: विस्तार एकते पए
0: एक

गुण तब कहते होता, तब बैर विरोध किस संग कमात, तब हर शोको किसे व्यापत, तब मोह कहाँ किस होवत परम, नानक करने हार न दूजा, तब बंद मुक्त को किसको गनी, तब नरक सुर को कौन अतार, तब सिंह सागर को हो किसाई, तब कवन निडर कवन कतरे, नानु छाकर अगम पार, ते जन मरन को कहां बनासन, तब जम की त्रास को हो किसोए, तब चित्र गुप्त किस पोष्ट लेखा, तब कौन छुटे कौन बंधन वादे, नानक अपन रूप अभी उपर जा, ते बिन मैल को हो के तोता, ते कौन को मान कौन उपमान, छल छिद्र लागत को कीस, ते किसे भूख कवन तरतावे, नानक करते का नहीं सुमार, तब कवन माए पाप मित्र सत पाई, ते वेदक देव का को चीन, तो सगन अप सगन के बिचारे, ते कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, नानक अपने गत जानो आप, वहां किसे व्यापत माया, ते गुण का नाही प्रवेश, ते कौन चेत किस लागे चिंता, ते कौन कथे कौन सुनने हारा, नानक आपको आपे पहुंचा, ते गुरने की नो बस्तार, कौ नरक कौ स्वर्ग बिछावत, हमें मोह परम व्यापार, अनेक प्रकार किए विज्ञान, फिर सोचे तो नानक के जे पसरे पसार संत प्रताप, उनकी शोभा नहु बनी, आपे रस भोग निर्जोग,

पूरे गुर का सुन उपदेश सा सा सिमरो गोविंद आस अनित त्यागो तरंग आप छोड़ बेनती करो हर तन के पर ले हो पंडा खेम कुशल सहज आनंद नरक निवार उदारो जीव।

0: सलोक साथ के बचन सुनत कमावत हो तो सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजय
1: करे प्रभु का जय
0: कट्टे कपाल महंत के माथे
1: कुदरे दिन के साथ
0: शरण जोग सुन सर नी आए
1: कृपा प्रभाव मिलाए
0: मिट गए बैर पे सबरे
1: अमृत राम सांग
0: सुप्रसन्न पे गुरुदेव
1: सेव की सेव
0: आल जंजाल बिकारते रहते
1: राम नाम सुन रचना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रतारी प्रभ की उसत करो संत मीत
1: सावधान
0: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो सबते ऊंच पाए स्थान हर तन खाट चले जन सोई
1: प्राप्त होए
0: खेम शांत रिदम निध विद्या तप जोग प्रत्या चार पदार्थ कमल प्रगास सुंदर चतुर तत् का बेटा
1: फल तिस जन के मुख बने

त्रम तीर गुरमत गबीर पर दुख बिसारण शब्द सर हर नाम सम उदार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध ना निखुटे गुरु रामदास।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत। धरती होर परै होर होर तिस्ती भार तलै कमन जोर। इह लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए। किता पसाओ एको कुआव तिस्ते होए लख दरियाओ। जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे ही उदास। असंख सूर मोह पाक सार असंख मोह लिवलाए तार। जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख निंदक सिर करह भार। नानक नीच कह विचार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो। अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण। जिता कीता तेता नाव विनावे नाही को थाओ। पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लैया हो धोए। पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहो। तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान। सब गुण तेरे में नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए। कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। मेल ना पाई है पंडती जे होवे लेख पुराण। इतवार ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई। किवका राखा किवसा लाही क्यों वरनी क्यों जाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता।

0: भुजंग प्रया छंद नमो सर्व माने समस्ती निधाने
1: नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व कौने नमो सर्व कौने
0: अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाते
1: नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप
1: प्रभंगी प्रमाते समस्ति बभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूप
1: नमो राजा जयश्रम प्रभ रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
1: नमो राजा जयश्रम प्रभ रूपे
0: नमो शस्त्र प्राणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम जुगते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो शाशाम नमो पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नाने
0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि
1: अनुपे रूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता
1: अदूर गर्दन गंगो कर्ता
0: परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अच्छेदी अपेदी अनामं अकामं
1: समस्त

0: भजन प्रिया छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमाने समस्ते निदाने
0: नमस्व निनाथे नमस्व प्रमाते
1: नमस्तु अंग गंजे नमस्तु अंग बंजे
0: नमस्व अकाले नमस्व अपाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो शाशाय नमो महामहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीति प्रीते
1: नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं
0: नमो सर्वज्ञानं नमो परमतां
1: नमो सर्वमन्त्रं नमो सर्वजन्त्रं
0: नमो सर्वदिशं नमो सर्वकृष्णं
1: नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अखिजे अभिजे समस्तं कृषिजे
0: पालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
1: सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी
0: चरपरछन्त प्रसाद अमृत कर्मे अवृत तर्मे
1: अकल जोगे अचल पोगे
0: अचल राजे अटल साजे
1: अकल मंगल कर्मं
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: वाल छंतो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख पार
1: सर्वं त्रिमान देव बेवाद उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
1: तत्व राजी अब तू त्रु प्रसाद
0: नाम ठामना जा जा कर रूप रंग न रेख
1: आद पुरखुदार मूर्त जोनाद से
0: देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग नाम काम विहीन पे खताम हूँ नह जाए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेल खेल खेल अनंत को प्रेक
0: दे पेव ना जा नहीं जय वेद और कतेब
1: रूप रंग न जात पास हो जानी के जेब
0: तात मात न जा जाकर जन्म मरण विहीन
1: जकर बकर फरे चतर चाक वाणी पर तीन
0: लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप
1: आदेव नाद मृताप
0: परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख
1: पार
0: कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश
1: परम रहत भूतला कपेश
0: अंग रागना रंग जाके जात पात ना नाम
1: गरुगंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक।

0: भुजंग प्रया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र माने चतर चक्र दाने जाती
0: छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे
1: न कर्मंग न काये अजन्मंग न जाये
0: न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्रे
1: प्रति से अधि

0: आत्म है सर्वात्म है
1: आत्म बस है जस के जस है
0: जंग प्रिया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेज
1: नमो प्रिय।

0: रहता कौन सी हो वो सुंदर गीता
1: श्री श्री दिखाए चंपावाज गास रूप से हम पर
0: रक्षा मेरी तुम करो सिख वाले सिख सुंदर
2: दूषित देव दूषित पाता सकल मले करो रणकाता
0: जय श्री शिव सब नए पड़े जिनके दुष्ट दुख दुख भाव मरे
1: पुरख जवान भाग परे तिहारे दिनके तुम संकट सब डारे
0: जो कोई बात या है ताके काल नहीं आए है
1: रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट रहे तत्काला
0: दर्शन जाए ना रो ताके ताप तुनिंग मार
2: रिद्धि

0: जग माता गंध करा कुलन सब राता।
1: किल भिक सकल दे को हरता दुस दोखियन को छय करता।
0: श्री सृजब दे दियाला पुरन करा गंध काला।
1: मन बांचत फल पावे सोई दुख न तसे व्यापत कोई अड़ल।
0: जो यास रसना पावे सने मोच लटत दावे।
1: दुख दर्द पौर निकट न तिन नर के रहे हु जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई। राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत देखना मान्यो।

0: संसार तुम देख दे एव हर का रूप है हर रूप नदरी आया
1: सादी बुझिया जावे कार कहे हर बिन वर्ण कोई
0: कहे नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट होई
1: सर्वनो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए
0: साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए।

0: बतायो इंद्र पिंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र पाए खपाए
1: लोग जतन दस गेल रचायो मोर आपी बीच मिलायो
0: दानव देव नंदन अपारा ग्रंथ बरच रचे सब गंधर्व जच रचे सब चारा
1: भूत भवेक भवान कहानी कट कट के पट पट के जानी
0: दात मात जह जात न पाता एक रंग का हो नहीं राता
1: ज्योत के बीच समाना सबू सर्व ठोर पहचाना
0: काल रहत अनकाल स्वरूप।

अर्पात नहिं जेहि रूप रंग रेख पेख को कह न सकत केहि अचल मूरत अनुभव प्रकाश।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहिले राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभा दर्शन परसे आए गुरु के। होवे सिफत खसामंदी मूर अरसों कुरसों हो, तुद डिठे सच्चे पातशाह हो, मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह हो, सिरसा हंदे

साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सब कुछ सच समावे रिग कह रहे भरपूर राम नाम देव मैं सू नाय लै प्रछ जय नानक तौ मुख अंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पर जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया काल में भेद थर्पण हुआ नाव खुदाई लोभया नी वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया।

दास तुम मात पिता हम बारिक ते तुम्हारी कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुत्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यंतर की खालसा जी। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यंतर के खालसा जी। बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यंतर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा है

सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटीय तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।